का विषय बाँचेका छौँ चौरासी आँखो घुम्दै घुम्दै मानवको छोरा पाएँ पो भनेर मन पाएँ।

कश्या माता कश्या पिता कश्या भाई कश्या श्रीमती कश्या छोरा कसो धन सम्पत्ति केही लानु छैन।

0: दुर्गा प्रसाद सेवापति कानून साहब सुनखानी सुनसारा सुदामा की नारी करछ दिन भारी विपतिले पति जाई विनती कर चिंका पिडरले गुरु देवता राजा रूपन भला मान सका निदान खाली है बंकन कहीं ज्योति समना देव के सौगर मन देव चंगा कर चौधरी का हरिषित मुला का मगरी इच्छा बर्तन में विचार मुठरे स्तंभ जमा कर दी सही स्तंभ बोली गए प्रयोजित पूछे दल का मां
1: नारायण
0: जन्यो बालक ओ जन्यो बालक ओ जगमग करने मन चित हरने।

नारायण हो किनवाने देखी झेल जल पर बाबू बसदेव देवकी दुवै झेल में छोरछोरी जन्म सके फिर कंसले मार्चा भन्नी उता पीर भएकाले नारायण बैला को चलना गो

सामुदायिक पहुँच का लागि संचार रेडियो सैलुङ सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ज अल्पाइन पब्लिक स्कूल सैलुङ समाचारको सहयात्री।

0: रेडियो सैलो सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ट्ज
1: अल्पाइन पब्लिक स्कूल सैलुङ समाचारको सहयात्री।

0: Bier, Extreme Energy Drink.
1: सामुदायिक पहुँच का लागि संचार रेडियो सैलुङ सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ज़।

0: नेवीस धुलिखेल अस्पताल दोलखा अस्पताल दोलखा
1: सामुदायिक पहुँच का लागि संचार रेडियो सैलुङ सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ज